सब जस पर रे वा फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अन चिंगोन वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मो अब्बा पाप दे मनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामोन.